प्रकाश गुण गण बरणा जल थल मदा मन शिजी अंग आसन अपंग उपमा अपार गात मिति उदार जल थल या मंड दिसवे अपंड

परमं आगंजी आलेखे अपरमं अकर्मं अपरमं आगंजी आलेखे पुजं प्रयार छंद नमस्तल वर्णामे सुमस्तल वर्णासे अगंजुल अनामे सुमस्तल निवासे निरकाम विभूते सुमस्तल स्वरूपे कुकर्मं वर्णासी सुधर्मं विभूते सदा सचिदानंद सतरंग वर्णासी करी मुल्क निंदा सुमस्तल निवासी अजाए बा बबूते गजाए बा गरी में हरियं करियं करी मल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुअंब सुबंग सर्वदा सर्वजुगते सर्प

तीरा इंद्र पाया अंतो न पाया कने तीरा आपना आप तू जान हे जिये जंद सब खेल तीरा का को आप खाने आखा तम इखा सब तू है जिन जग तो पाया कह नानक तू सदा गम है तीरा इंद्र पाया सुर नार मंदर अमृत खोज दे

संभाले समनादन करते करना किया चिंता पे करनी दाह सो करता चिंता करे जिन पाया जाग तिस दुहारी स्वस्थ तिस

कहते पोवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

का विकरण विचार ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन पुए मनै सुरत हुए मन बुद्ध मनै सगल पवन की शुद्ध मनै मुँह झूठा ना खाए मनै जम कै शासन जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कुए मनै मार्ग ठाकन पाए मनै पास्यों प्रगट जाए मनै मगना चले पंथ मनै तरव सीती संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कुई

अहंकार मन हथ मति मुडिये गर्म सच सोतार गर्मन क्यों तरिए सुख होए ज्यो पावे त्यो रख तू मैं अवर ना दूजा कोए रहो अगे देखो डो जलो पाछे हरियो अंगूर जिसते जे जिसते विनसे कट कट सच भरपूर आपे मेल मिलाव ही साचे महल दूर साहे साहे तुझ संभला कदे ना विसारो ज्यो तो ज्यो ज्यो साहेब मन वसे गुरमुख अमृत पेओ मन तन तेरा तू तनी गर्भ निवार समयो जिने जगत पाया त्रै पवन कर आकार तन तेरा तू तनी गर्भ निवार समयो तिने जगत पाया त्रै पवन कर आकार गुरमुख चानण जानिए मन खबद अपवार घट घट ज्योत निरंतरी बुझे गुरमत सार गुरमुख जिनी जानिया तिन कीचे सवास सच्चे छेती रल मिले सच्चे गुण प्रगास नानक नाम संतोखिया जियो पिंड प्रपास सिराग महला पहला सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है जब लग जो बनसास है तब लगे हो तंदे बिन गुण कामना वही टै टेरी तन खे मेरे मन लैला कर जाहे गुरमुख नाम सलाहिए हों में निवरी पाहे रहा रहाओ सुन सुन गंडन गंडिये लिख पढ़ बुझे पार तृष्णाए न सगली हमें रोग विकार ओ बेपरवाह तोलवा गुरमत कीमत सार लख स्याण पजे करी लख सो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जाप जीरे छुट्टिए गुरमुख चीने आप तन मन गुर पै बेचिया मन दिया सिर नाल त्रै पवन खोज टडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल सिर राग महला पहला मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस तू सर्व जिया प्रित पाल ही लेखे सास ग्रास अंतर गुरमुख तू बसे जो पावे त्यो नरजास जीरे राम जात मन मान अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहो अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संक उतार मोया चित कर जाइए जित जीव दया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार अनहद बाणी पाइए ते हमें होए विनाश सतगुर सेवे अपना हाउ सद करवाने तास खड़ तर गे पहनाइए मुखर नाम निवास जय देखा तैरा वरे शिव शक्ति का मेल त्रै गुणवंदी दोहरी जो आया जग सो खेल वजोगी दुख विछड़े मनमुख लहे न मेल मन वरागी कर वसे सच पैराता होए ज्ञान महारस भोगवे बहड़ भूख ना होए नानके बन मार मिल पी फिर दुख ना होए सिराग महला पहला एहो मनो मूर्ख मूर्ख लोभिया लोभे लगा लपान शब्दन पीजे सागता दुर्मता वनजान साधु सतगुर जे मिले ता पाइए गुणी निदान नान रे हमे छोड़ गमान हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान रहो राम नाम जा दिन सरात गुरम घातन जान सब सुख हर रस भोगने संत सभा मिल ज्ञान नितैन चरब अरब सेव्या सतगुर दिया नाम कुकर कूड़ कमाइए कर निंदा पचे पचान पर में भुला दुख कणो जा मार करे खलिहान मनमुख सुख ना पाइए गुरमुख सुख सबान ऐथे तंद पटाइए सच लिखत परवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करनी परदान नानक नाम न विसरे कर्म सचे निशान सिराग महला पहला एक तिल प्यारा विसरे रोग बड़ा मन माहे क्यों दरगे पत पाइए जा हर ना बसे मन माहे गुर मिलिया सुख पाइए अगन मरे गुण माहे मन रे अनसार गुण सार जिन खिन पल नाम ना विसरे ते जन बिरले संसार रहो ज्योति ज्योत मलाइए सुरती सुरत संयोग हिंसा होमें गत गए नाही सहसा सो गुरमुख जिस हर मन वसे तिस मेले गुर संजोग काया कावण जे करी भोगे भोगन हार तिस नानक जय जो दिसे जलनहार गुरमुख रवे सुहागणी सो प्रसास सेज पतार चारे अगनवार मार गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासे अमृत भरिया गाए नानक सतगुर मीत कर सच पावे दरगे जाए
ਸੇ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਾ ਜਪੋ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਏ ਤੁਲੀਏ ਪੂਰੇ ਤੋਲ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਰਿਧਮਾਨ ਕਮੋਲ ਅਮੋਲ ਪਾਈ ਰੇ ਹਰ ਹੀਰਾ ਗੁਰਮਾਹੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਏ ਐਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਰਹੁ ਸੱਚਰ ਵੱਖਰ ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਧਨ ਰਾਸ ਲੈ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਉ ਅਗਨ ਮਰੇ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤਿਉ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਜਮਦਾ ਦਾਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਇਉਂ ਭਾਉ ਜਲ ਤਰੇ ਤਰਾਸ ਗੁਰਮ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਵੀ ਸੱਚਰ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਏ ਸਾਕਤ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਸੱਚਰ ਤੇ ਗੁਰਮੇਲਿਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਮਨ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲਾਲ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰ ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਤਨ ਨਾਮ ਹੈ ਕਟ ਕਟ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਦਿਆ ਕਰੇ ਹਰ ਹੀਰ ਸਿਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰਮੇ

जल थल मैयर दै दिस बरसाया। सात बुझी सात पई बुझी सब तृष्णा, आनंद पिया सब ठाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने किते नू आप प्रित पाले, पै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकी सरन पया गत पाइये, सास हर नाम त्याइये। तिस बिन हो न दूजा ठाकर, सब तिसे की।

आनंद सहज अनम सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पंजमा सो सच मंदर जित सच त्याइए सोरिदा सहेला जित हर गुण गाइए सातर्त सुहावी जित बसे हर जन सच्चे नाम बिठो करवानो जियो साच बड़ाई कीम न पाई कुदत कर्म न कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो तू सच सलान सच सलान बड़ पागी पाइए गुर प्रसादी हर गुण गाइए रंग रते तेरे तुद पावे सच नाम निसानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थनंतर सच्चा सोई नानक सच त्याइए सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिस सहेला जप अमृत नाम सात संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल बंजे जीवन सफल थाई जियो अमृत नाम दुख सब लाथे अंतर बार हर प्रभ साथे पै पौ परम खोया गुरपुरे देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ बड ऊच अपारा नौ नींद नम परे भंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा

पैर गोविंद गुण गाइए, बिसरना कोई सासा जियो, सोई साजन मीत प्यारा, राम नाम साध संग बिचारा, साधु संग तरीजे सागर, कटिए जम की फसा जियो, चार पदार्थ हर की सेवा, पार जा जप लख अपेवा, काम क्रोध किल बिख गुर कटे।

बां पकड़ती स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना चरण कमल पगता मन बुठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बाछे नाम सच्चे का घैना उठत बैठत हर हर गाइये जिस सिमरत बरने चल पाइये नानको प्रभु हो दियाला तेरा कीता सैना राग माज अष्टपदिया महला पहला कर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगाहे मैल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया हाँ वारी जियो बारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदा

कर कर जाए कनेरी, कर अवगुण पुछतावणिया, हुकम पछाने सो हर गुण बखाने, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सच्चे छूट से नाम सुभावणिया, मनमुख पुल्ला ठोर न पाए, जमदर बद्दा चोटा खाए, बिना बेको संग न साथी, मुक्ते

आपे मेलियो प्रभ सचे, पूरे कर्म तू पावणिया, मैं होर ना कोई तू दे जेहा, तेरी नदर सी जस देहा, आंदीन सार संभाल, आंदीन सार संभाल हर राखे, गुरमुख सहज समावणिया, तुद जे बड़ मैं होर न कोई, तुद आपे सिर जे आपे कोई, तू आपे ही कड़ भन सवारे, नानक नाम सुहावणिया, माज महला तीजा, सब कट आपे पोगणहारा, लख वरते अगम अपारा, गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याइए, सहजे सच समावणिया, हों वारी जियो वारी, गुर शब्द मन बसावणिया, शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे, मन सामार समावणिया रहो, पांच दूत मोहे संसारा, मन मुख अंधे सोधना सारा, गुरमुख होवे सो अपना कर राखे, पांच दूत शब्द पजावणिया, एक गुरमुख सदा सच

अंतरप्रगास महारस पीवे दर सच्चे शब्द बिजावणिया हाँ वारी जियो वारी गुरचरणी चेत लावणिया सतगुर है अमृत

अरे सच ब्याजे सच कमावे, सचो सच कमावणिया, बिन राशी को बथ क्यों पाए, मनमुख पुल्ले लोक सवाए, बिन राशी सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणिया, एक सच बंजे गुरु शब्द प्यारे, आप तरे सगले कुल तारे, आए से परवान हुए मिल प्रीतम सुख पावणिया।

अपि तब तपे अपि तुते बात किशु ना हो भय तू आपे कर लावणी आपे मारे आप जीवाए अपे मिले मेल मिलाए ते बाते सदा सुख पाए गुरमुख सहज सुनावणिया आपे ऊचा ऊचो होई साब खाली सोह विखै कोई नानक नाम सह कटियंतर आपे वेख विखालणिया माज महला तीजा मेरा पर प्रभ भरपूर रहा सबताई गुरप्रसादे कर ही मैं पाई सदा श्री भी एक मां त्याई गुरमुख सच सुमावणिया हो बारी जियो बारी जग जीवन मन वसावणिया हर जग जीवन निरपो दाता गुरमत सहज सुमावणिया रहाउ घर मैं तरती तौर पाताला कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला सदा आनंद रहे सुदाता गुरमति सहज सुमावणिया आय अंदर अवमें मेरा जमण मरण ना चूके फेरा गुरमुख वह सुहोमें मारी सचो सच त्यावणिया काया अंदर पाप उन दोई भाई दोही मिलकर सिर टुपाई दुवै तारे मार जाई घर आवे गुरमती सहज समावणिया कर ही मैं दूजे भाई अनेरा चन हुवै छोडे हो मैं मेरा छोडे हो मैं चन हुवै छोडे हो मैं मेरा प्रगट सबत है सुदाता अंदर नाम त्यावणिया अंतर जूत प्रगट पा सारा गुरु साखी मिट्टिया अंधियारा कमल